सिरे करा लेगा, अड़ तो नोड़िए मोरे करा लेगा, उसरा उसरा निनय करा लेंगे, उड़ने उड़ने मरक करा लेंगे।